जिनी नाम थे आया गए मसकत का नानक ते मुखे अजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

गोविंद दास तुहार, सगल द्वार कौ छाड़ कर गहो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरेआ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना।

गुरसिख हो गुरसिख है, पीर पीर हो कोई, शब्द सुरत चेला गुरु, परमेश्वर सोई, दर्शन दिष्ट ध्यान धर, गुर मूरत होई, शब्द सुरत कर कीर्तन, सत संग विलोई, वाहिगुरु गुरमंत्र है, जप हौ मैं खोई, आप गवाए आप है, गुण गुणी परोई, जाकै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जनम मरण भय दुखी, चार पदार्थ नव निद पावै, बहुर ना तृष्णा भुखी, जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास ते आवहु ठाकुर कौ, मान तन जियरे मुखी, शांत पावह होवह मन शीतल, अगन नयंतर तुखी, गोर नानक कौ प्रभु दिखाया, जल थल त्रिपवन रुखी, विसर नाही दातार, आपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहिल, राख हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, अंदर सच्चा ने हो, लाया प्रीतम आपना, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने, सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुवाय, दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, हुआ सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जनम जनम दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सत नाम

本南，古巴勒提拉阿尔丹，就将那托马里帕格塔卡兰提。तेन के काज सवारता गोपाल तेरा आरता जो जान तुम्हारी भगत करंते तिन के काज सवारता रहा दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन निका अनाज मंगो सत सीका गौ

गौ पैस मंगौ लावे रे, एक ताजन तुरे चंगे रे, करके गीहन चंगे जन तन्ना लेवा मंगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाद बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसामदी, नूर अरसों कुरसों चटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावेसा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना

हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तो जन का पूर्ण दीजै हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन का पूरन बल बल जाओ रमैया कारने

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सरना।

ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास।

जा के ते नच्चे मंगते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजा गावे राजे रानिया बोले आल पता लगता क्या के मुद्रे लगता क्या के हा जित तन पाइए नानका सेतन हो वैशा।

थलवारों ने बहुत लाटू मधाणिया अनगा पंखी पौंदिया लेना सा सुए चाड़ पवाइए जंत नान पौंदिया गंत नान ते बंधन बन पुआए सोए पया किरत नचै सब कोई नच नच हसै चले सिर उड़ना जाई सिदना होए नच

0: हम च हसे हम च रोवे हम च परिये हम च तोवे हम विच जाति जिन सिखोवे हम विच मूर्ख हम विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हम विच माया हम विच छाया हमें कर कर जंतु पाया हमें बूझे तांदर सुझे ज्ञान में होना कत कत लूजे नानक हुक्मी लिखी है लेख जिहा वेखे तिहा वेख मल्ला दूजा
1: हमें एहा जात है हमें कर्म कमाहे हमें एही बंदना फिर जो नी पाहे हमें कितों उपजे कित संयम एह

0: पैना पड़ पड़ गड्डी नदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खाद पड़िए जेते बरस बरस पड़ी जेते मास पड़िए जेती आर जा पड़ी जेते सास नानक लिख एक गल और हमें चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लवे आबो पेक किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनस कह रहे मोन भगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पिता अपना किया कमाना मल खाई सिर छाई पाई।

मूर्खन दे पत गवाई बिन नावे कि ताए ना पाई रह बानी मरी मसानी अंद ना जाने फिर पछतानी सतगुरु भेटे।

कर्म जिना कि तुद पाया तत नी खसम त्याया इना जनता के बस किश नहीं तुद वेकी चक तुद पाया प्राण तू मेरे रे कप तुद पाया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आ बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।

तपस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा हो। जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कला पर पूर रहा। तू सच्चा साहब सिवत सवालो जिन की सो पार पया कौ नानक कर दे बात जो किस कर ना सो कर रहा महला।

0: एक तिरसनंग सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासदेव सुजे को जाने प्यो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: बेपदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए
0: का बदा मन रहे
1: गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़या हो।

रे मन मूस बिला में गर्बत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत।

0: दास तुझे समझावत।
1: माया रंग बिरंग करत ब्रह्म, मोह कै कूप गबार पर्यो है। एता गब आकाश नामावत, बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है। दह दिसताए महाबिख्या को, पर तन छीन ज्ञान हर्यो है। जोबन बीत जरा रोग रस्यो, जमदूतन डन मृत मर्यो है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उदरे से नानक, कर कृपा संत आप करयो है।
2: गुण समो फल

0: पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान पापन सुच किरया, चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान, प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समर्थ, नानक दास सदा बलहारी।
1: आवद कट्यो न जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो न जात, विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो न जात, रहो जन तूर लग। नीर न साक्ष बोर, चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, सिदे हर नाम खग।
2: उद्दम कर लागे बो पाती, बिचरे अनिक शास्त्र बो खटुआ। पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते, सूखम देह बंदे बो जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चकर करत सोम पाका, अनेक पात ठाटे कर ठटुआ।
3: गुण गावे नवनाथ, धन गुर साच समायो। मा दाता गुण रवे, जेन चकर वै कहायो। गुण गावे बलराओ, सपत पाताल बसंतो। परथर गुण उचरे, सदा गुर संग रहंतो। दूर बा परूरो अंगरे, गुर नानक जस गायो। कब काल सुजस नानक गुर, काट काट सहज समायो।
4: अब राखो दास पाठ की राज, जैसी राखी राज। भगत प्रहलाद की, हर नाकस फारे करे आज। फुन द्रौपदी राज, रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोसाज, सो दामा अपदा ते राखिया। गन का परत पूरे ते काज, श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास पाठ की राज, जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन। जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जिया की तपत मिटावे। जेह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बलपन, मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर रग प्रभ पाईए, सो सतगुर सिमरो नरो।
5: सतयुग तै माण्यो, छल्यो बल बावन पायो। त्रेतै तै माण्यो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार, कंस किरतारथ कियो। उग्र सैन को राज अपै, भगते जन दियो। कलयुग परमाने, नानक गुर

साधु प्रभ अराधु आपने प्रभ पावा बेनवंत नानक दया तारह सदा हर गुण गावा।